0: Mi puiten gas LPG kan lakin keji somni pakuatling ngei turani. Gas inren semkonga mi puiten theitop chwahi kan mo phorna ania. Chumetan chuan gas stove le gas pipe alik le lik lo chekte uchuak taka gas man lo te hi kan ti turani. Tin gas inren semkonga malak nan gas aya man the induction stove te zo thuk engine oil mangte po mangtel chin turin kan ni ngani.
1: नमस्ते श्रोताओं, हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अब आपको बेहतर सेवा प्रदान करने के हमारे प्रयास में हमारे साथ जुड़े रेज रेडियो ऑडियंस इंटरैक्टिव सर्वेक्षण और मूल्यांकन हमारे विशिष्ट मोबाइल ऐप के साथ मानद संरक्षक बने, जहां आप उद्घोषकों को रेटिंग दे सकते हैं, कार्यक्रमों की समीक्षा कर सकते हैं और अपनी प्रतिक्रिया साझा कर सकते हैं। बस हमारे आधिकारिक फेसबुक पेज पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें और पंजीकरण करें। आपकी सक्रिय प्रतिक्रिया हमें आकाशवाणी की विरासत को बेहतर बनाने और बनाए रखने में मदद करेगी। तो सिर्फ सुने नहीं, रेज मोबाइल ऐप के साथ बदलाव का नेतृत्व करें।

नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात आप सभी प्यारे दोस्तों को, और आप सभी मेरे साथ सुन रहे हैं आकाशवाणी आइजोल एफएम ज़ोआय 100.7 और आपके साथ हिंदी के खंड पे फिर एक बार हाजिर है आप सभी के लिए दोस्तों, आप सभी के दोस्त आरजे वीएली। और दोस्तों, कल रात की नींद आप सभी की कैसी गई? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी के कल रात की नींद अच्छी गई होगी, है ना? यस। और हम चाहते हैं कि आज का दिन आप सभी के लिए दोबारा एक बहुत ही अच्छा वाला दिन हो, खुशियाँ और आनंद से वाला। यस, और आपके इस दिन को और भी खुशियाँ और आनंद से भरने के लिए हम हाजिर हैं आप सभी के लिए। तो चलिए, फिलहाल मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ने आज सुबह की शुरुआत बहुत ही खूबसूरत मुस्कुराहट के साथ की होगी। अगर नहीं की है तो अभी कर लीजिए। मैं इंतज़ार कर रही हूँ आपके एक मुस्कुराहट का। क्योंकि अगर आप एक मुस्कुराहट के साथ अपने दिन की शुरुआत करेंगे तो आपका दिन बहुत ही अच्छे से बीतेगा, ठीक है? और चलिए, हम हाजिर हैं, हम आएंगे, मतलब हम यहाँ पर आपके लिए पूरे 3 बजे तक साथ देंगे, ठीक है? और शायद आप अभी अपने कामों में जाने के लिए तैयार हो रहे होंगे, और कहीं पर भी जाएंगे दोस्तों, कहीं पर भी जा रहे हैं, ऑफिस हो या अपने कुछ कुछ इम्पोर्टेंट काम के लिए जा रहे हैं या खेतों पर जा रहे हैं, आप जो भी काम करेंगे आप अच्छे से करते रहना, ठीक है? और हम चाहते हैं कि आपको कुछ भी कठिनाई, प्रॉब्लम्स वगैरह वगैरह ना हो। तो चलिए, हम आपके साथ हमेशा रहेंगे और साथ देंगे, और हमें आपके प्यार भरे संदेशों का भी इंतज़ार रहेगा दोस्तों, ठीक है? और जिसकी मैंने कहा था कि आप सभी से कि इस एफएम ज़ोआय 100.7 पर अगर आप हमारा साथ नहीं देते तो हमें अच्छा नहीं लगता है, हमें आपकी याद आती है। तो चलिए, आज दोबारा मेरे साथ आरजे वीएली के साथ हंसी मजाक प्यार भरे बातों के साथ जुड़ जाइए फिर एक बार, और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हिंदी के खंड पे। और आप सभी ने कल रात अपने सपने में किसी को देखा होगा, और आप सभी का सपना अच्छा ही होगा। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे ना कि आपने आरजे वीएली आपने सपने में किसको देखा, तो मैं आपसे कहूंगी कि मैंने सपने में किसी को नहीं देखा। तो चलिए, फिलहाल मैं सुनाना चाहूंगी बहुत ही खूबसूरत गीत, इस खंड का सबसे पहला गीत, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। यस, कुमार सानू की आवाज़ में गाया गीत है, मेरी तरफ से इस खंड की शुरुआती गीत आप सभी के नाम।

वेल दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को इस खंड का सबसे पहला गीत आप सभी के लिए जो हमने पेश किया था, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे सब कुछ अच्छा लगने लगा। यस, जब मैंने एक लड़का को देखा तो मुझे ऐसा लगा कि सब कुछ बदल गया। ऐसा वाला फीलिंग काश हमारे साथ भी होता। तो खैर, देखते हैं, चलिए जिंदगी हमें क्या मतलब क्या दिखाती है। उस दिन का हमें इंतजार रहेगा। और आपको भी अभी तक ऐसा वाला लड़का लड़की नहीं मिला है तो आप इंतजार कीजिए। जैसे कि मैंने कल बोला था कि इंतजार का फल बहुत मीठा होता है। और फिलहाल मैं अगला गीत सुनाने से पहले दोस्तों, मैं आपके भेजे गए संदेश की तरफ चलना चाहूंगी। और संदेश आया है मेरी तरफ से इस खंड का सबसे पहला घाकते पा ने ट्रेन मैसेज कर दो मसबे अटलत मई अनिहना जब दुख थर निथर चिबैले इलापेले तुरखा मोया मुनपुई भी कुंगते या एला रामा मित एल जिल जा मा इतान कलाने अरोंती आ कनिलोम लुटुके ओ चुआनी थान सकते पो हियान अन लाउ गाई थांगे दुरा बे सयांग ओ गाते पा चुआन अंग पोविना हुन छतक मंग इमन थे ना दुसक ना कलान से नी ओ चुआन के चान पा हियान जाम हियान आरजेबी नमस्ते गुड मॉर्निंग ओले नंग पो गुड मॉर्निंग सुप्रभातो जाम बुइना इपेली समी जोंग जोंग खा कफेंस रुकुल विपिन तान सिया बुम थुरिन गन थान सक अंगे अतान ओम अचान ओम रियाउ ए अचान ओम रियाउ मै विपिन हि बुइन ड्यूटी नुआम उले हरोंतिनी कचान पाइ चुफेल छिन ने मै ni e nimin lam chu office akal do kan ka segment kala zo si lawa of ka han phal box si law kamo office han keng chaw nge ya oh a phone chan du chan ngai ta thei tha ma se radio kha chu a radio big riau kan angai be tat si kamo nim om chin he mai nom chin chuan moya mun pu hian rgbl dam cha mo chibai duty nuam le jilal za ma ma mu ni beti mar ma thuanga pc jessica ma chungi de tan le nang ma dan haran te bokani fel chin e po chuan ke chian pa cute lutuk mai pa eng aron langa pa eng hian ajaya ngai bo ina fm zo oiruna i hu i mun ngai lua le thai tu ra khwanun alo ra man che hi lom phot ila ni etro ma se ire re lu tu kum ave man chep ka kum avan kum ave man chep in ka sha re wa klau chu klau ngai thla manang che par pari pu nen po kan rem chan ve le kan lo leng le nge nge don nia o ran ti ani e khai klau ha ka lau thli reng an che u ka nga khle khop mai in lo le le hun chu mo in lo le le hun tur chutiang o chuan ni edro pa eng eng ke ma hian lom hi i han tum phot mai zelila eng kim hi anwa mani mei tro kan shing nu na thil kan ton reng reng te hi enge kan nun konga lesson chatak mai zirtina chatak

mu tir tu atana kan ban ro aw kan man zel chuan kan tifu zel tu ra nga hi lama ro chu kan hring luna thil engemoni har satna te kan to ang kemani kan inti chia khachu atwar tur khachu kemani bokan ya taro chuwangin आपके पास जो भी है आप उसे अच्छे से संभालिए और खुश रहने के लिए कोशिश कीजिए दोस्तों. खुश रहना इंसान के लिए बहुत जरूरी है. ठीक है, तो चलिए भी घूमते हैं और जो नगस बॉय की तरफ से संदेश आया है लेकिन मैं इस अगले गीत के सुनाने के बाद पढ़ना चाहूंगी. मेरे प्यारे दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी के प्यार भरे संदेशों के लिए. तो आइए आप सभी का मन पसंदी गीत दिल का रिश्ता मैं सुनाना चाहूंगी इस अगले गीत में दोस्तों. चलिए सुनते हैं मेरी तरफ से और आप सभी ने इस आज के दिन की सुबह की शुरुआत बहुत ही अच्छे से की होगी. अगर अभी तक नहीं की है तो आप अच्छे से कर लीजिए क्योंकि हम बहुत खुश नसीब हैं क्योंकि हमें एक नया दिन हमेशा मिलता है. और अपने इस नए दिन को समय को अच्छे से बिताने के लिए कोशिश कीजिए दोस्तों. ठीक है, आप जहां पर भी होंगे कहीं पर भी जा रहे हैं अपना ख्याल रखिएगा. ठीक है, तो आइए सुनते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा गीत दिल का रिश्ता मेरी तरफ से आप सभी के नाम.

वेल दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को दिल का रिश्ता गीत सुनकर आप सभी को अच्छा लगा होगा, आपको पसंद भी आया होगा। और ये गीत तो कोई भी जब सुनता है तो सभी पसंद करते ही हैं। यस, तो आपकी पसंदीदा गीत भी है। और चलिए मैं एक बात कहना चाहूँगी, दिल का रिश्ता गीत से मुझे ये बात याद आ रही है, मतलब ये बात मेरे दिल में आ गई जो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि दिल का रिश्ता ना दोस्तों लफ्ज़ों से नहीं, एहसास से बनता है। ठीक है दिल का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है ना दोस्तों, लफ्ज़ों से नहीं एहसास से बनता है। दिल का रिश्ता वो होता है जो हर दूरी के बाद भी दिलों को करीब लाता है मतलब जहाँ सच्चा प्यार हो ना दोस्तों, वही दिल का रिश्ता हमेशा जिंदा रहता है। ठीक है, जहाँ सच्चा प्यार हो वहाँ हमेशा दिल का रिश्ता जिंदा रहता है। दिल का रिश्ता किस्मत से मिलता है और मोहब्बत से निभाया जाता है। ठीक है, सबसे खूबसूरत रिश्ता वही होता है जो सीधा दिल से जुड़ता है। ठीक है, तो चलिए मेरा भी आप सभी से एक दिल का रिश्ता है जो कभी भी मिटेगा नहीं। और यस, मैं हमेशा दुआ करती हूँ आरजे वियली आप सभी के लिए जो भी हमें सुनते हैं इस एफएम 100.7 को, वो मतलब उन सभी दोस्तों के लिए दुआ करते हैं, करती हूँ कि आपको जिंदगी में ऐसा दिल का रिश्ता मिले जो आपकी जिंदगी को बहुत खूबसूरत बना दे। तो आइए इस दिल के रिश्ते को और भी मजबूत बनाने के लिए अगले गीत की तरफ चलते हैं। छाया है जो दिल पे, क्या नशा, मेरी तरफ से आप सभी के लिए। और यहाँ पर कुंगतिया का मैसेज आया है, संदेश आया है, उन्होंने लिखा है कि आज ये मूवी एल्बो इन ही का किस्मत दिन अनियंगेम ओ नितोरा बे सयंग ओ। ठीक है, और जो नगस बॉय हैं इज ऑल नमस्ते, यस आपको भी नमस्ते जो नगस बॉय, कैसे हैं आप ना के थोकले चन तो अंगे निजान कमो मंग निजान कमो मंग आ कमो जो लव लीर नी ए नेक्स्ट इतान रोंटी आ चुआन लव लीर मो ओए पिक्चर रों थोन ही अनोम हेल तोप ओए गन लोकल बेचाक मासे कचा को तुक हेत्यांग लंग पंग नथो ही मो मारो चु पंगंग वंग बते का लाओ चुआन ओ काम बहुत है ओ कोई बात नहीं, अगर हमारे पास काम करने के लिए काम है तो अच्छी बात है। ठीक है, और ले लोग नेक्स्ट सॉन्ग खा बोते नो चल तांग नुला पलिया जायदम नुन्नेम का उद्वाद सितूती आरजे बेजी लल मुन लुई तान रंती आ चुआन मा तुआ गमिशन बेंग यान हेलो हेलो आरजे वियल चिबई उले कमिंग इलमरिक नो कमिंग इलमरि नोक नोक खा कश्या ए सालो थन सक्से लोम वर्ल्ड कप के एना तिदे बुरिन ऑफिस कथेंग शाम लौंगाई थबेले फोतंग अनि तकछु वर्ल्ड कप एन चुआन ति ख तिदे बुर ख चुंगाई थत लोम तिरो अन टाइमिंग हि अबोय थाक सी आ तिरो इन एन पे हि इन पकोम ले इन कश्या तो चलिए फिलहाल सुनाना चाहूंगी छाया है जो दिल पे, क्या नशा, मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी के नाम।

कल दोस्तों उम्मीद है आप सभी को शान और कविता कृष्णमूर्ति के आवाज़ में गाया गीत आप सभी के लिए छाया है जो दिल पे क्या नशा है। जब किसी के प्यार का नशा हम पर चढ़ जाता है तो ऐसा ही होता है, हम उन्हीं को ही सोचते हैं, ऐसा महसूस होता है कि वो हमारे पास ही है। हम कहीं पर भी जाते हैं तो हमें ये एहसास होता है कि वो हमारे ही पास है और हमारे ही साथ बैठे हैं, हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं। तो चलिए, आपका दिन यूं ही, आपका समय यूं ही अच्छे से बीतता रहे दोस्तों। और चलिए, मैं अगले गीत की तरफ चलना चाहूंगी और अगला गीत मैं सुनाना चाहूंगी आप सभी प्यारे दोस्तों को, बहुत ही खूबसूरत सा गीत। जी हाँ दोस्तों, सुबह के मतलब 9 बज चुके हैं और शायद आप सभी अपने अपने कामों में जाने के लिए रेडी हो रहे होंगे, नाश्ता कर रहे होंगे और यस, हमें सुन रहे होंगे अपने काम करने के साथ साथ, चाहे वो चलने के समय हो या लेटे समय हो। हमें पूरी उम्मीद है कि आप सभी हमें सुन रहे हैं और आप सभी को अच्छा भी लग रहा है दोस्तों। चलिए, अब मैं सुनाना चाहूँगी आप सभी दोस्तों को, बहुत ही खूबसूरत गीत है एकाश के हम, बहुत ही खूबसूरत गीत कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ में गाया गीत है। तो चलिए आइए सुनते हैं। और मिंग मोइते अहियान वाले नमस्ते दूती नामले हरोंते बोका, बहुत बहुत शुक्रिया मिंग मोइते आपके संदेश के लिए भी। तो आइए चलिए सुनते हैं ये गीत, बहुत ही खूबसूरत गीत आप सभी के नाम।

फिरदौस उम्मीदी आप सभी को कुमार सानू के आवाज में गाया गीत एकाश के हम होश में अब आप सभी को जरूर पसंद आया होगा दोस्तों। और अब हमारे इस खंड से आप सभी से विदा लेने का फिर से समय आ चुका है दोस्तों। हम चाहते तो नहीं है आप सभी से विदा लेना, लेकिन क्या करें, हमारे पास मतलब समय की पाबंदी के कारण ऐसा करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों हम कहीं नहीं जाएंगे, हम आएंगे दोबारा आपको गीत सुनाने के लिए और आपसे बातें करने के लिए और आपके भेजे गए संदेशों को पढ़ने के लिए दोस्तों। यस, और मैं वापस आऊंगी दोस्तों दोबारा 10:40 पर, यानी 10:40 पर, ठीक है। दर सोमले में सोमले या करुण ले दोनों नहीं सुमो, तो आपको दोबारा मेरे साथ जुड़ना है, ठीक है, कहीं नहीं जाना है। आप सभी अपने काम करने के साथ साथ, कुछ भी करने के साथ साथ, आप गाड़ी चला रहे हो या चल रहे हो या खाना बना रहे हो या आप कुछ लिख रहे हो या फिर आप कंप्यूटर के सामने बैठे हो, तभी हमें सुन सकते हैं, हमारे गीतों का आनंद ले सकते हैं, हमसे बातें कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, आप सभी का इंतजार रहेगा हमेशा क्योंकि आपके बिना हम इस FM 100.7 पर बहुत ही अधूरे हैं दोस्तों, ठीक है। और चलिए जाते जाते मैं एक बात आप सभी से कहना चाहूंगी कि एक सच्चा वाला प्यार कभी भी किसी को धोखा नहीं देता है। और मोहब्बत ऐसी चीज है ना दोस्तों कि सबसे खूबसूरत रिश्ता वही होता है जो सीधा दिल से जुड़ता है, ठीक है। जिस इंसान से आप मोहब्बत करेंगे ना, वो रिश्ता सीधा दिल से जुड़ता है, ठीक है। ऐसे बनाए से मतलब छोटे रिश्तों से कुछ भी रिश्ता जिंदगी भर नहीं चलता है। इसलिए आप ऐसा वाला प्यार कीजिए जो जिंदगी भर यूं ही चलता रहे। तो दोस्तों मैं इजाजत लेना चाहूंगी बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ, और आप सभी अच्छे से जाइएगा, ठीक है। और मैं चाहती हूँ कि आप सभी का दिन अच्छे से बीता रहे दोस्तों, और मिलते हैं दोस्तों 10:40 पर। और आज तो वैसे भी आरजे ओफेली आपके साथ लाइव शो पर, यस, FB के हमारे पेज पर हाजिर होगी, तो आपको भी वहां पर जुड़ना है, साथ देना है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए इस आखिरी गीत के साथ आरजे वीली को इजाजत दीजिए, और अभी तक जिन्होंने भी सुबह का नाश्ता नहीं किया है उन सभी के लिए, उन सभी दोस्तों के लिए आरजे वीली की तरफ से जय देव।

नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हम दोबारा स्वागत करते हैं हिंदी के खंड पे। और आप सभी मेरे साथ सुन रहे हैं आकाशवाणी आइजोल FM ज़ोय 100.7। और दोस्तों, आप सभी का समय कैसे चल रहा है? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी ने RJ ऑफेरी और RJCS सांगते के साथ शायद आप सभी ने एंजॉय किया होगा उनके पेश किए गए सुनाए गए गीतों को सुनकर उनसे बातें करते हुए। तो आइए मेरे साथ भी जुड़ जाइए इस FM ज़ोय 100.7 के दूसरे हिंदी के खंड में। दोस्तों, RJ वियली के साथ मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ दोस्तों। और मैं कोशिश करूँगी कि आप सभी का समय दिन अच्छे से बीते। तो चलिए, आप सभी के समय को, दिन को, आपके कामों को अच्छे से बिताने के लिए दोस्तों, हम इस खंड की शुरुआत करते हैं बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ। अरिजीत सिंह की आवाज में गाया गीत मेरी तरफ से दोस्तों, तुझको केवल तुझको और क्या करें, तुझको ही हम याद करते हैं, तुझसे ही बातें करना चाहते हैं। किसी और किसी और का ख्याल हमारे दिल में नहीं रहता, तुझ बिन बिना तो आइए दोस्तों, मेरे साथ RJ वियली के साथ हंसी मजाक और प्यार भरे बातें करने के लिए जुड़ जाइए। आपका इंतजार रहेगा इस FM ज़ोय 100.7 के हिंदी के दूसरे खंड पर दोस्तों। तो आइए, सबसे पहला गीत मैं सुनाना चाहूंगी अरिजीत सिंह की आवाज में गाया गीत मेरी तरफ से तुझको, आप सभी के नाम।

बहुत ही खूबसूरत गीत, यस, सुनिधि चौहान और अरिजीत सिंह की आवाज में गाया गीत दोस्तों तुझको, मुझे बहुत ही पसंद है यह गीत। अभी अभी मैं सुन रही थी तो मैंने सोचा कि आपको भी सुना दूं। मेरे खंड में हाजिर होने से पहले मैं ये गाना सुन रही थी तो मैंने सोचा कि आपको भी सुना लूं। तो कैसा लगा आपको दोस्तों तुझको? ओनली तुझको, ओनली यू। यस, जमाने में कहीं मेरी तरह कभी चाहेगा ना कोई तुझको, जैसे मैंने दिया वैसे पूरी तरह दिल देगा ना कोई तुझको। आप सभी को गीत जरूर पसंद आया होगा। प्लीज हमें अपने संदेश के जरिए बताइएगा आपको कैसा लग रहा है हमारा हमारे साथ हिंदी के गीतों को सुनकर। तो अब हम अगले गीत की तरफ चलेंगे और अगला गीत दोस्तों मैं सुनाने से पहले मैं आपके भेजे गए संदेश की तरफ चलना चाहूंगी। यस, जिस संदेश का हमें बेसब्री से इंतजार है वो एलजेड साइलोते जामते दुर्गेश जी और पएंगते की तरफ से संदेश पहुंचा है दोस्तों। बहुत बहुत शुक्रिया। और गीत, यस, आपके संदेश की तरफ चलने से पहले मैं आपको एक गीत सुनाना चाहूंगी, वो मैं एक बार ढूंढ लेती हूँ दोस्तों। यस, मैं आपको ना बारिश में तुम गीत सुनाना चाहूंगी। यस, मुझे मिल गया है। तो चलिए और संदेश आया है पएंगा की तरफ से। पएंगा हियान आरजे ना इज्वाल ना इज्वाली नी ओम तक चु इलाउ नी ए जई थे वक सिया कंगाई वोंग वोंग छिन कंगाई वोंग वोंग छिन न चेही ले ले ले या मिंदिल ता से कपल हो लफंग वन नाम तक एम स्वामिन एप्रिंग तो आहियान छत न हियान थिल ती थे ना अंगा जोक फे अवान दिख सी एम इस सेगमेंट नु नोंग लम आ चुआन कमन तो लो मै थे वान पोई तक ओ पएंग इमेल इबियां खा का मुचाक तो खो मै इला मुदोन लोम चुआन दुर्गेश जी हियान गुड मॉर्निंग आरजे वीएल जी। यस, नमस्कार कहकर उन्होंने हमें विश किया है। बहुत बहुत शुक्रिया दुर्गेश जी आपके विश के लिए। आपको भी गुड मॉर्निंग। बहुत देर के बाद आप हमें विश करते हैं लेकिन देर से सही, पर विश तो किया ना इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया दिल से। और मेरे दोस्त जाम की तरफ से संदेश आया है जामहिया ना जेवियल इप्लेलिस्ते ड्यूटी पुइनियन इंतान ओ ओले जाम हे आरजेसी असांगते हियान ओ ड्यूटी लाइक हान थिल कलौती संदे या चानकन लूट आजो मागन लूट खचु अलौरेल न सखोप मै चिया हे जाम हि जति खति ओ नोमति ले मै दिते अलौ सैवेल चे आ अछागति नोम तो हुन मन हि लोम लुबेर चु त्रो चन तीन विपिन ले उशिपिया उमिंग उमिंग आ छुआम पुइतान ले पुसंग मा मते नुपा मिशन वेंग खंगमी ले पु जाय माते तान पो ओरोन तिया ओले जाम फिल्ट्रीन ले मै चुआन छदेउ खान ना खलो थोप जे रो चुआन मिन लो गाय बक बक लौला ओ अ चुआन एल्स अ साइलो हियान लवान कन वाना जामने लो फेवेरु ए चाकोम खोप मै संगा कन मनदोनिया ओइ चु फै चु नोम दोन इन मन लाइटिंग तका कन लो थिरवेल चोंगा तरो
ก็เชื่อเวลาเด็กันปังปาร์มอยเดี๋ยวบุเดี๋ยวจบเมื่อเด็กค่ะโอ้ทายเด็กหันอมเวลังอ่ะกันเราที่เวงเจ้างามันนอมโดนตักอินเวงอ่ะก็รอนลานอินเวงอ่ะก็รอนลานเปลี่ยนเสียอ่ะอินเวงก็รอนลานเปลี่ยนเสียอ่ะอินเวงก็รอนลานเปลี่ยนเสียลมกาแฟโดนินเอออันนี้ตักซูมเขายังไงเนี่ยฮวนतो चलिए दोस्तों इसी तरह हंसी मजाक चलती रहेगी हमारे साथ आज वेले के साथ और प्यार भरे बातें होगी होती रहेगी दोस्तों तो आइए अगले गीत की तरफ चलते हैं लेकिन दोस्तों एक यस ओह फिलहाल चलिए सुनाना चाहूंगी बारिश में तुम बहुत ही खूबसूरत गीत आजकल मुझे ये गीत बहुत ही पसंद है रोहन प्रीत और नेहा कक्कर की आवाज में गाया गीत मेरी तरफ से आप सभी के नाम

वेल दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको भी मेरी तरह नेहा कक्कर और रोहन प्रीत के आवाज में गाया गीत बारिश में तुम, मुझको बारिश पसंद है और मुझको बारिश में तुम कितना प्यारा गीत है ना दोस्तों। और जब नेहा कक्कर और रोहन प्रीत को मैं जब एक दूसरे के साथ देखती हूँ तो कितना अच्छा लगता है। उन दोनों में वो जो प्यार है ना दोस्तों, एक गहरा वाला प्यार, एक दिल का रिश्ता वाला प्यार, वो महसूस होता है। मतलब दोनों में कितना प्यार है ना, वो अंदर से भी दिखता है और बाहर से भी दिखता है। ठीक है, अगर आप भी देखो देखना चाहेंगे तो आप देख सकोगे अगर आपका मन किया तो। ठीक है, आप देख लीजिए यूट्यूब पर, आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अगले गीत की तरफ चलते हैं। अगला गीत दोस्तों मैं सुनाना चाहूंगी आप सभी प्यारे दोस्तों को। यस, बहुत ही खूबसूरत सा गीत चलिए सुनाना चाहूंगी, केसरिया। और इस गीत से पहले मैं आपके भेजे गए संदेश की तरफ चलना चाहूंगी। और तो चलिए आपके भेजे गए संदेश की तरफ। मैं मोहित यहाँ वाला कंगाई था रिंग निया रोंटिया ओले कलाम तो के ओ मैं मोहित स्वान एल बी रेंट लेकिन आर जे वी एल वो इन निमन नुआम ले इलाउ तेल ले हित स्वान नी ते ही अतोई बी ग्रिया विन कशे थ्री नेक्स्ट खा इतान ले एफएम गाइटर तू जोंग जोंग तानो रोंटिया नी अनी तक तक मो एल बी कवन ओ इच्छा लाओ एम ओ ओ चुआन सो पता का हियान आर जे जोल बोई आ जोल बोई चु कनी लाओ आर जे वी एली कनी आ जोल बोई का चु अतां खा ओम खमो आर जे जोल बोई का ओमा गेमा चु आर जे वी एली ओ पी ओ खा अब मोई तक ए मी प्ले ले दूर खा इतान ओ रोन त्यानी ए तक तक बोगन तिमे दो लो मले तो चलिए फिलहाल सुनते हैं केसरिया, बहुत ही प्यारा सा गीत अरिजीत सिंह की आवाज में गाएगी। तो मेरी तरफ से आप सभी प्यारे दोस्तों के लिए एल बी रेन थे मिंग मोहिते अते सोय पथंग अते एल जेट साइलते जामते और दुर्गेश जी पेंग अते पो आप सभी प्यारे दोस्तों के लिए

वेल दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आप सभी को कैसा लग रहा है अरिजीत सिंह के आवाज में गाया गीत आप सभी के लिए आरजे वील की तरफ से केसरिया, बहुत ही प्यार भरा गीत। यस, मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आया होगा। और दोस्तों, आप सभी का समय अच्छे से बीत रहा होगा, है ना? और हम नहीं चाहते कि आपका समय बहुत ही बुरे समय से बीते। दोस्तों, आपको किसी की भी बुरी नज़र ना लगे, आप हमेशा सुरक्षित रहे सभी चीज़ों में से। तो चलिए, फिलहाल अब मैं चलूंगी मेरे दोस्त का मन पसंदी गीत सोना कितना सोना है। आर जे सी एस सॉन्ग ते स्टाइल कर लो कनी खा ओ गजाई थी हम चुका नी म्या लवा। मुझे गाना तो आता नहीं है, लेकिन अभी जो मैं प्ले कर रही हूँ आपके लिए, वो उनको तो बहुत ही मतलब वो बहुत ही ग्रेट आर्टिस्ट हैं, उदित नारायण और पूर्णिमा। सोना कितना सोना है। तो चलिए आप सभी मेरे साथ चलिए नाचते हैं। आप जहां पर भी होंगे आप हमारे साथ नाचिएगा, ठीक है? जामा लद्दू एम एम आई और लामरम बॉक्स सीखा। तो चलिए आप सभी हमारे साथ नाचिए, गाइए, गुनगुनाइए, ठीक है? तो चलिए सुनते हैं ये अगला गीत सोना कितना सोना है मेरी तरफ से आप सभी के नाम।

दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को हमारे दोस्त जाम की मनपसंदी गीत सोना कितना सोना है सुनकर आप सभी को अच्छा लगा होगा, और मेरे दोस्त जाम को भी ये गीत सुनकर बहुत अच्छा लगा होगा, और उनका काम बहुत ही मजे से चल रहा होगा, और ना थोक रंग सुत फाइन कर रिंग जामन तेरो जाम लाम चुंगवेर खान हन हन इन शे क्वा से तो चलिए अजा महन अताई प्रे लु तुका ओई थुई बॉक्सिया अमाय रोजु का खे खरी दोन जाम ओ तो चलिए हम अगले गीत की तरफ चलते हैं, और दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, हमारा समय दोस्तों 11:20 तक है दोस्तों, ठीक है, तो इसलिए हम जल्दी जल्दी करेंगे, और दोस्तों एक किसी ने बहुत खूबसूरत बात कही है, जिंदगी जीने की, जिंदगी जीतने की नहीं है, ठीक है, जीने की चीज है, ठीक है, इसलिए हर वक्त खुद को साबित करने की दौड़ में मत भागो, थोड़ा रुक कर जिंदगी को महसूस भी करो, ठीक है, क्योंकि आखिर में जीती हुई बाजियां नहीं, जी हुए पल याद रहते हैं, ठीक है, इसलिए कभी जीतने के लिए कोशिश मत कीजिए, और जिंदगी ना जीतने के लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो चलिए आप जिंदगी को महसूस कीजिए, फील कीजिए दोस्तों जो आपके साथ हो रहा है, ठीक है, तो चलिए फिलहाल सुनाना चाहूंगी तेरे प्यार में मैं मर जावा, बहुत ही खूबसूरत गीत मेरी तरफ से रूप कुमार राठौर जी और जसपिंदर नरूला की आवाज में गाया गीत मेरी तरफ से आप सभी के नाम।

Well, दोस्त, उम्मीद है आप सभी को जसपिंदर नरूला और रूप कुमार राठौर जी की आवाज में गाया गीत तेरे प्यार में मैं मर जावा, बहुत ही खूबसूरत गीत आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे, है ना? और तो दोस्तों, अगले गीत की तरफ चलने से पहले हम चलेंगे आपके भेजे गए संदेश की तरफ, जो हमने कहा था कि इस गीत के सुनाने के बाद हम पढ़ना चाहेंगे, जो है जामहियान मेरे दोस्त जामक की तरफ से संदेश है. उन्होंने लिखा है कि आरजे वील एंगा एंगा तिंगे एफएम जो ओइर जून जाम ले इ जून जाम ही मिन जे ने बिग एम एम ले कन थो ना आ हियान हे रिमोय रुन एफएम जो ओइ ngai थाक लो कतुम पोन अथे ngang लो जुक निया तिन इदिउ इलो ड्यूटी चांग ति हियान यान का ले इनुई रिमोय ले थियाम ले थियाम ले थियाम लवा इजाई जो इजाई जो फे छुआन वान मना कतिम लोक ही अनि रिंगोत अलोम ले इजाई पो इथियाम खोप मै जाई लंपो इति मी व्याव दो ने हरों त्यानी अनि तक चो जाम ओले चान इति लो मम छीने बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त जाम ओ आपके तारीफों के लिए. और दोस्तों, हमारा समय खत्म होने वाला है कुछ समय के बाद. 11:20 पर हम आपकी दोस्त आरजे ओफेली लाइव शो पर हाजिर होगी. दोस्तों, आप सभी को आना है, आप सभी को ढेर सारे कमेंट्स भेजने हैं दोस्तों, ठीक है? आप सभी जुड़ जाइएगा 11:20 पर, यानी 11:20 पर, ठीक है? और यहाँ पर मॉरिस एलआर ख्यांग की तरफ से संदेश आया है. अनि ह्यान सर सोल पथंगन अकाउ द्वाद वे एम एम से आ मिदंग इको मुदया अमिया गवंदी स्वाल पल ओ गति पलनी ओ गति स्वाल याव याव नी इमिंग पो इमिंग टॉप लम खा का अजवाल बोई वेचे अनी खा इहाउ ए मे ओ ओ एंगे आरजे जवाल बोई खा ओ म्याव सियालोम आरजे जवाल बोई आदि खचवान इ एंगे एंग पो चुनी से इपे ली से अमोई छीनते ताके मिस नेक्स्ट next le chi akha zo oi fm ngai tu te tan ka hlan le veke aron tia maurice la khyang te khyan bahut bahut shukriya mere pyare dosto aap sabhi ke pyar bhare sandesh ke liye aur main chahti hu ki dosto aap sabhi hamare sath judte rahe enjoy karte rahe aur jaise ki maine kaha tha ki aap sabhi se abhi abhi ki aapki do sarji ofeli live show पर हमारे पेज ऑल इंडिया रेडियो एफपी के हमारे पेज ऑल इंडिया रेडियो पर हाजिर होगी. तो आप सभी जुड़ जाइएगा दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है, ठीक है? तो चलिए, मैं चलती हूँ इस आखिरी गीत को लेकर और मैं वापस आऊंगी दोबारा 12:40 पर दोस्तों. तब तक आप सभी तो फ्री हो जाएंगे ना. इन फ्री तो दोन बका बोकंगा और दारसो बनेरे में सोमलिया मैं हाजिर होंगी दोबारा. मैं लौट कर आऊंगी कुछ नए गीतों के साथ, फिर वही हंसी मजाक प्यार भरी बातें करने के लिए. तब तक लिए दोस्तों, ये आखिरी गीत मेरी तरफ से, इस खंड का आखिरी गीत आप सभी के नाम. और बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों मुझे संदेश भेजने के लिए, हमारा साथ देने के लिए. तो आरजे पीरी की तरफ से बाय बाय, टेक केयर, पेकू ओ केवल इस खंड के लिए.

हेलो, नमस्ते, गुड आफ्टरनून, शुभ दोपहर आप सभी प्यारे दोस्तों को आरजे वीएलई की तरफ से। और आप सभी मेरे साथ सुन रहे हैं आकाशवाणी आइजोल एफएम 100.7। दोस्तों, और आप सभी का मैं दोबारा स्वागत करती हूँ हिंदी के खंड में। दोस्तों, आप सभी ने आरजे सी एस सांगते के साथ एक प्यार भरे मिजो डिवोशनल सॉन्ग आप सभी ने सुनकर एंजॉय किया होगा उनके साथ बातें करते हुए। दोस्तों, तो आइए मेरे साथ दोबारा जुड़ जाइए हंसी मजाक और प्यार भरी बातें करने के लिए आरजे वीएलई के साथ। दोस्तों, और हमें उम्मीद है कि मुझे उम्मीद है कि आप सभी का समय अच्छे से बीत रहा होगा, आप अच्छे से समय बिता रहे होंगे। एम आई राइट? यस। तो चलिए आपके समय को और भी ज्यादा बहुत ही खुशियों से भर देते हैं बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ। दोस्तों, आइए इस गीत को महसूस कीजिए। दोस्तों, फील कीजिए कि संगीत आपको आपके सारे दुखों को दूर कर दे, आपके सारे थकान को दूर कर दे। तो चलिए फिलहाल मैं सुनाना चाहूंगी अरिजीत सिंह के बहुत ही खूबसूरत आवाज में गाया गीत तुझको, इस खंड का सबसे पहला गीत आप सभी के नाम।

वेल, मेरे प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को, तुझको अरिजीत सिंह की आवाज में गाया गीत आप सभी को जरूर पसंद आया होगा. यस, कहते हैं कि अगर कोई तुम्हारे बिना खुश रहे ना रहे खुश है ना अगर कोई तुम्हारे बिना खुश है ना तो उसे खुश ही रहने दो. ठीक है, अगर कोई तुम्हारे बिना खुश है तो उसे खुश ही रहने दो. उसके पीछे भागना अपने सेल्फ रिस्पेक्ट खराब मत करो. ठीक है, उसके पीछे भाग कर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को खराब मत कीजिए दोस्तों, क्योंकि जो तुम्हारा है ना कहीं नहीं जाएगा. ठीक है, जो तुम्हारा है वो कहीं नहीं जाएगा, और वो चला गया तो समझो कि वो तुम्हारा था ही नहीं. ठीक है, जो तुम्हें छोड़ के चले जाता है वो तुम्हारा था ही नहीं. ठीक है, और जो तुम्हारा है नहीं उसके पीछे मत भागो. ठीक है, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को यूं ही खराब मत होने दीजिए. जो चला गया उसे जाने दो. ठीक है, तो चलिए हम अगले गीत की तरफ चलते हैं. अगला गीत मैं सुनाना चाहूंगी आप सभी प्यारे दोस्तों को, बहुत ही खूबसूरत गीत. अगला गीत मेरी तरफ से आप सभी प्यारे दोस्तों को, तेरे हवाले कर दिया, शिल्पा राव और अरिजीत सिंह के ही आवाज में गाया गीत मेरी तरफ से. और दोस्तों, यहाँ पर मेरे दोस्त जामे की तरफ से संदेश आया है. जामेहान RJVL, गुड आफ्टरनून रोंती आ ओ नंगपोले ओ जाम चान ये प्ले लिस्ट अवाय खानी तान चाउ इद्यूती पुई तान इद्यूती पुई तान एरो इफल इफल ताकले इलो सेम चन बे मे दोनिया फल दे लू ले ले आज भी वो इंहान विपिन अलंग वे मैं अलो इदूती ही अशे लो नियांग अब वाई देव नियांग कौ जी पी पोर अलंग अलंग बिग चांग है ने तिला जो बॉय लू तुका बॉय थाक नो पोके तिलो ए एक पो निसे นี่เอ๋ดูแลส่วนบวยแบบแบบลูตุกาอามาโบไงตัวอมเวลครบไหมโอ้ช่วยเลี้ยฟิลฮาลพอดบอกชูกรีมเมเรดอสจามักอับเก๋เมเรดอสจามาอับเก๋สัญญาชเกลี่ย์และกูดบอยฮิอานาเจวันล่ะตุกินดารีเลี้ยชันเวขานเฮงการอนโพสนะมูนาเทฮิอานกักลกัทิลฮอนเชนคัดเนนออรันตียาเองเองเงออรันเทนฮิเอ๋อาวตุยเมลเบโออะตุยเมลเฮ้ไม่เลยเอเกเบดอนเนี่ยโออืมอะเลตะชุเลฟิลฮาดอสโตสุนเตเฮเตเรฮวาเลกันดิยามีตรับเซอาปซบีกนาม

मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आप सभी को कैसा लगा शिल्पा राव और अरिजीत सिंह की आवाज में गाया गीत तेरे हवाले कर दिया? यस जी हाँ, हमें जिससे हमें मोहब्बत होती है, प्यार होती है, उनके लिए तो पूरी जिंदगी उनके लिए सौंप देना ही बेहतर है ना. यस, और मैं चाहती हूँ कि जिससे भी आप मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, या फिर वो प्यार एक दोस्ती का भी हो, कैसे वाला भी रिश्ता हो, प्यार का रिश्ता दोस्ती का हो या भाई बहन का, परिवार का, वो एक सच्चा गहरा होना चाहिए, है ना दोस्तों. इसलिए आप जो भी जिससे भी प्यार करेंगे, आप दिल से करिए, ठीक है. और चलिए, मैं अगले गीत की तरफ चलना चाहूंगी. और इस गीत के सुनाने से पहले सोलपथंगा की तरफ से संदेश आया है. आर जे वी एल सोन चो कन ए पॉर्पिंग पोंगता ए गजाइटी ले तुर खाई तानो रोंटीनी ओले गजाइटी ले तुर जोंग सोंग ही नंगमानी तान मो इन सवाई जोंग जोंग तान खान तु न थला किरण थोन कमो कहो जोंग जोंग तान ले इतान ल्याव ल्याव खान. ओ बहुत बहुत शुक्रिया सोल पथंग आपके संदेश के लिए. तो चलिए फिलहाल सुनते हैं विशाल मिश्रा और आशीष कौर के आवाज में गाया गीत जान बन गए. बहुत खूबसूरत गीत आप सभी के नाम.

दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप सभी को हरजीत सिंह की आवाज में गाया बहुत ही खूबसूरत गीत अपना बना ले आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे, है ना। तो हमारे पास बहुत ज्यादा समय है 1:20 तक का समय है दोस्तों। वो इंसू नी ही अकल मुआंग रिया विन कशिया तिरोजाम अकल चक लाओ गति निमिन खा अकल जुंग जुंग इन कशिया निमिन खा रही लाओ तो और दोस्तों एक बात मैं कहना चाहूंगी आप सभी प्यारे दोस्तों से कि प्यार आप समझते हैं ना प्यार क्या है। प्यार मतलब मंगाइना है ना, प्यार मोहब्बत ये सब ना बहुत बड़ी जिम्मेदारी की चीज है, ठीक है। जिम्मेदारी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्यार मोहब्बत एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी की चीज है। प्यार प्यार ना दोस्तों हंसी मजाक नहीं है, ठीक है मतलब प्यार हंसी मजाक नहीं है, प्यार ना एक बहुत सीरियस चीज है, ठीक है। मतलब हंसी मजाक का कहने का मतलब है कि जब चाहा उठाया, जब चाहा फेंक दिया, ये ऐसे वाला नहीं है, ठीक है। लेकिन प्यार में हम हंसी मजाक कर सकते हैं, खुश मुस्कुरा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए प्यार बड़ी जिम्मेदारी की चीज है और ये प्यार हंसी मजाक नहीं है। जिंदगी प्यार ना जिंदगी की एक साधना का नाम है, ठीक है। प्यार एक बहुत ही सीरियस चीज है जिसे ऐसे ही ठुकरा कर मतलब ऐसे ही ठुकराया नहीं जाता है, ठीक है। तो इसलिए प्यार को अगर आपको किसी के साथ किसी से एक सच्चा वाला प्यार मिलता है ना, तो उसको ना संभालने के लिए आप कोशिश कीजिए, ठीक है। उसे संभालिए, उसे अपने दिल में बसा कर रखिए, उसे जाने मत दीजिए। अगर वो एक बार चला गया ना, वो कभी वापस नहीं आते, ठीक है। अगर आपके पास एक सच्चा वाला प्यार है ना, तो उसे संभालने के लिए जिंदगी भर कोशिश कीजिए, मतलब हमेशा कोशिश कीजिए कि वो आपके हाथ से ना चला जाए, ठीक है। तो चलिए अगला गीत मैं सुनाना चाहूंगी आप सभी प्यारे दोस्तों को। ये मेरे उची पिया का बहुत ही मनपसंदी गीत है तो जो मिला थिंगलांग तिमेयांग ओ खोपुया ओम्मा खान हे लाही अरुण थांगवे ज्यानी। ये हमेशा मेरे उची पिया, मेरे मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त उची पिया अक्सर इस गीत को फरमाइश करते थे अरुण थांगजिया जी ना। लेकिन अभी वो बहुत ही खोपुयाम तो अभी वो बहुत ही बिजी हो गए हैं, क्या करूं मैं कुछ तो कर नहीं सकते। लेकिन हम उन्हें बहुत हमेशा याद करते हैं। जब वो FM ZOY 100.7 पर हमें संदेश भेजते हैं तो हमें और भी ज्यादा अच्छा लगता है। और हम जब भी FM ZOY 100.7 पर आते हैं हिंदी के खंड पे, हम उनको भी मिस करते हैं, हम उनके संदेशों को मिस करते हैं और हम उनके लिए हमेशा दुआ करते हैं कि वो हमेशा जिंदगी में अपने परिवार के साथ, अपने बाल बच्चों के साथ अपने बेबीज के साथ हमेशा खुश रहे। तो चलिए आइए मेरे दोस्त बहुत ही हैंडसम चार्मिंग लवली फ्रेंड उची पिया का मनपसंदी गीत तो जो मिला के आवाज में गाया गीत सुनाना चाहूंगी आप सभी के लिए मेरी तरफ से।

दोस्तों, आप सभी को कैसा लगा? तो जो मिला के आवाज में गाया गीत, मेरी तरफ से आप सभी के लिए ट्रिपिया का मनपसंदी गीत। तो इसी इसी को कहते हैं सच्चा वाला प्यार। अगर वो हमारे साथ भी नहीं तो क्या हुआ? तो और वैसे भी प्यार का ये मतलब नहीं है, मतलब प्यार प्यार ही तो दोस्ती है, और दोस्ती का मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा हमारा साथ रहे, है ना? उनके ना होने या होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस एक सच्चा वाला दोस्ती हमारे पास, मतलब हम उसे महसूस कर सकते हैं, ठीक है? इसी को तो कहते हैं सच्चा वाला दोस्ती। तो कुंगते हियान उठी पी आती रंग मई ओ कऊ जोकर दर्जामा इवेंग थोंग लाउलु तुक इवेंग थोंग लाउलु तुक की गन्न थी ने इदानील थियाम ले मई जाम कंचा जाओ जे लंग ओ अरुण चोंग हर हा कतिलु तुका कहे ही लोम का हाल है ले मैम उलल जामला दोल दोल जोर तकी न जोरा तिताऊ गम सी लाओ अनी तक बेल चो आ अजोर दोन बोक लाओ चो आ यह जत साइलाओ हियान ललवान कन लो ओम पुई रेंग चेन या इचों कन लो गाई था अरवन ती बोका ए खाई बन लो मुं बे ओ। तो चलिए फिलहाल मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी के प्यार भरे संदेश के लिए। और कुंती अति थिंजिम वेली सुन नाम ही कंती ए ममो उची पिया कंती ले बेदो मनीले। तो चलिए फिलहाल सुनाना चाहूंगी दीवाना है ये मन मेरी तरफ से आप सभी के नाम, और ये गीत मेरे दोस्त मेरे जामा को बहुत ही पसंद है, तो आपको भी जरूर पसंद आएगा। सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज में गाया गीत आप सभी के नाम।

वेल दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को बहुत ही खूबसूरत सा गीत, मेरे दोस्त जामा का मनपसंदी गीत दीवाना है ये मन, आप सभी को जरूर पसंद आया होगा। दोस्तों, अब हमारे इस खंड के लिए फिर से दोबारा जाने का समय आ चुका है दोस्तों, लेकिन ये हमारा आज के लिए आखिरी खंड नहीं है। हम वापस आएंगे दोबारा 2:05 पर, 5 मिनट पर, पूरे 2:30 बजे तक दोस्तों। और यहाँ पर जाते जाते मैं एक संदेश पढ़ना चाहूंगी, एक नहीं तीन, यस तीन संदेश पहुंचे हैं। Kung te hian adik iti lutuk hi inui aza ni mo. I love you, kung te. Kei la tu dik hi gan sui ang phuk phuk zel mei si a tu e motan suan nual roi roi na thamani. Te la mai nual don lau tro sam. Ka tia ti boy ca kalom gan tum. Zamahian, Arjavian nang tu ki lo in her chuak thwai thwai se ka ti e ka ti lo zam ka hu phur lu tu ko an san chu i nui ri moi le i sak mel moi tang mei chu e vi la ma life a kan clear thei do na ka cancel don ka she lo de rang a ka life lo de yang tu man an she don lo chuan i ri ru ang tur a mi zong zong ang a mi zong zong ngai vek a eo kung ler thaka thinlung tui ek zia hi ari ru ang tura mi zong zong angai veka buai thak hian ke wala nyan kung te isai diklut tuk zama kani vieli hi in nei vieli hi in nei ta se thanga zong te ai po khan a Thai boy zo gang a je veli yan zu zu a mut lang wang anya uthi pe ya ti adi khum zi ani yang ga yin du du tan kha lo song da bia de a ti ro zam to chaliye filhal hamara samay khatam ho gaya hai dosto, aap sabhi ko मेरा साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं चाहती हूँ कि इसी तरह मेरी तरह आप सभी भी मुस्कुराते रहे और मैं भी यस हंसी मजाक करना तो मुझे बहुत ही पसंद है, मुझे अच्छा लगता है। और दोस्तों, मैं क्या बताऊँ आपको, आपसे बहुत ही कुछ कहना है लेकिन क्या करें, समय नहीं होता है हमारे पास। फिर भी दोस्तों, हम जल्दी वापस आएंगे दोबारा हिंदी के ढेर सारे गीतों के साथ और आरजे वेले के साथ हंसी मजाक प्यार भरे बातें करने के लिए। और जाते जाते एक बात आप सभी से फिर दोबारा कहना चाहूंगी कि प्यार बड़ी जिम्मेदारी की चीज है, प्यार हंसी मजाक नहीं है, जिंदगी की एक साधना का नाम ही प्यार है, ठीक है। तो इसलिए आप प्यार को सीरियस लीजिए, ठीक है। जब चाहा मत छोड़िए, जब चाहा उठाया, जब नहीं चाहा तो फेंक दिया, ऐसा मत कीजिएगा किसी के साथ भी दोस्तों, ठीक है। तो चलिए, हमारा और आपका संबंध तो यूं ही बने रहे। चलती हूँ इस आखिरी गीत को लेकर। मेरी तरफ से ये आखिरी गीत लड़की बड़ी अनजानी है आप सभी के नाम, इस खंड का आखिरी गीत, और मिलते हैं 2:05 पर, ठीक है, यानी 2:05 पर, ठीक है। तो ये आखिरी गीत मेरी तरफ से आप सभी के नाम और अजय वेली की तरफ से, बाय बाय टू ऑल।

हेलो, नमस्ते, गुड आफ्टरनून, शुभ दोपहर आप सभी प्यारे दोस्तों को. आरजे वीएलए की तरफ से फिर एक बार आप सभी का हम स्वागत करते हैं हिंदी के खंड पे. और दोस्तों, ये खंड है ना आज के लिए हमारे लिए हिंदी का आखिरी खंड है. और हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी का दिन अच्छे से चल रहा होगा, आप सभी अच्छे से बिता रहे होंगे अपने काम करने के साथ साथ, या घर पर यूं ही रहते हुए, लेटे हुए, सोते हुए, बैठते हुए, चाय पीने के साथ साथ. तो चलिए, आप सभी का हम स्वागत करते हैं दोबारा, और आप सभी के प्यार भरे संदेशों का भी इंतजार रहेगा दोस्तों. तो आइए, चलिए शुरुआत करते हैं बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ, तू ही तू, इस खंड का. यस, सबसे पहला गीत आप सभी के नाम.

वेल दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को तू ही तू हर जगह आजकल क्यों है. बहुत ही खूबसूरत सा गीत आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे दोस्तों. तो आइए अगले गीत की तरफ चलते हैं जल्दी से. हमारा समय पूरे 2:30 बजे तक का है, यानी 2:30 तक है दोस्तों. इसके बाद तो मैं आप सभी को छोड़ के चली जाऊंगी. पता नहीं कब फिर से कब मुलाकात हो जाए. और जामा की तरफ से, मेरे दोस्त की तरफ से संदेश आया है, लेकिन अचुंगला पंगे चु चार लो मैं ओ नंग फोर सी कई कपोर सी लाओ एकेन से अंदोन के तीखा. नेक्स्ट सॉन्ग इतान सा उबी एल ट्वांग तकिन हो अंग से ओ रंतिया ओ ले जाम नंग बोट ट्वांग तो इन इहो दोनिया ओ इन थो जो हुना ओ चुआन. मैं उम्मीद करती हूँ कि दोस्तों आप सभी का दिन अच्छे से बीता होगा आज, और आप ज्यादा थके तो नहीं ना. इन लो हालू तुक पलंगे. ओ आप सभी अपना ख्याल रखिएगा. तो आइए आपको आरामदायक गीत सुनाने के लिए चलते हैं अगले गीत की तरफ. राधा लंबिया मेरी तरफ से आप सभी के नाम.

वेल दोस्तों, आप सभी को राता लंबियां। हमारी तरह आप सभी को भी जरूर पसंद आए होंगे, है ना? यस, अब हम चल देंगे अगले गीत की तरफ। और यस, कहते हैं कि दोस्तों कि कुछ रिश्ते मुकम्मल नहीं होते, लेकिन वो अधूरे रहकर भी जिंदगी को मुकम्मल कर देते हैं। इस बात से आप क्या सहमत हैं? अगर आप इस बात से सहमत हैं तो जरा हमें भी तो बताइए कि आप सहमत हैं या नहीं। मैं तो बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से कि कुछ रिश्ते मुकम्मल नहीं होते, लेकिन वो अधूरे रहकर भी जिंदगी को मुकम्मल कर देते हैं। काश ऐसा वाला प्यार हमारे पास भी होता। तो खैर, जामन अताइपिंग में का अताइप में का तो हम उनका इंतजार करेंगे। हम आपका भी इंतजार कर रहे हैं FM 100.7 पर दोस्तों, आपके संदेशों का। तो चलिए अगला गीत सुनते हैं, अगर तुम साथ हो, मेरी तरफ से आप सभी के नाम।

मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आप सभी को गीत अभी जो हमने सुना था, अगर तुम साथ हो तो कितना अच्छा होता। आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे। जी हाँ, जब उसके मतलब उसका साथ, उनका साथ जिंदगी भर होता तो कितना अच्छा होता। और चलिए, हम बहुत ही करीब आ चुके हैं आप सभी से विदा लेने का, लेकिन यहाँ पर मेरे दोस्त अजाम की तरफ से संदेश आया है। लेकिन अजाम का छ्यारी लो मैं यंग ओ ओ कलोम लो तो के ओ जाम आ मिन खेरा वांगिन ओ चुआन एलबी रेंट है यान आरजेवीएल a to pa lo nai ta reng mai bo in chu in wi ri le i omoi lu tuk mai kan chia a ni a rei lo pha lu tuk o ni a rei lo pha nak tuk chu i live don mo don lo don lo i play le tur kha i ta lia lia o ran ti a ole I'll be rin thai bahut bahut shukriya aapke sandesh ke liye लाइव डोन लाओ जा मखान सोई माई माई निखा का लाइव डोन लाओ रेंग रेंग ओ चुआन एल जे साइ लाओ हियान लल वान ट्रॉक दकिन हो ट्रॉक दकिन ओ मंग छा ले फोट ले नक तुक नि थ्वाई थ्वाई से इन मन सवाल हम तक ओ नॉन बुक सी शॉन बुक सी अंग खा मो। तो चलिए मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आप सभी से अब सचमुच का, आप सभी से अलविदा कहने का वक्त आ चुका है। क्या करें दोस्तों, लेकिन ना ये दूरियां हम और आप, हमारे हमारा ये जो दोस्ती का रिश्ता है ना, ये दूरी हमेशा एक दूसरे को करीब लाते रहे। तो चलिए, मैं आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। अब आप सभी के मतलब समय के लिए, आने वाले दिन के लिए आप सभी बहुत ही ज़्यादा तरक्की करें, खुशियाँ पाएं, सभी के साथ आप अच्छे से रहें, आप अपने परिवार का साथ दें, आपका परिवार खुश हो, आपका परिवार खुशियाँ और आनंद से भरता रहे, और आप कभी भी मतलब आप कभी भी अपने आप को एक अकेलापन महसूस मत कीजिए, क्योंकि ये FM 100.7 आपके लिए हमेशा रहते हैं। ठीक है, पूरे 9:30 बजे तक दिन को भी पूरे 3 बजे तक। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप हमेशा FM 100.7 के साथ ढेर सारे एंजॉय करते होंगे दोस्तों। तो चलिए, आरजे वेली को आप सभी से अलविदा कहने का समय आ चुका है, और मैं वादा करती हूँ कि आप सभी से जल्द ही मिले। तो जाते जाते एक लाइन मैं आप सभी से कहना चाहूँगी, जो है कि किसी ने बहुत मतलब खूबसूरत बात कही है कि जिंदगी जीतने की नहीं, जीने की चीज़ है। जिंदगी जीतने की नहीं, जीने की चीज़ है। बहुत इम्पोर्टेंट है ना दोस्तों, जिंदगी जीने की नहीं, जीतने की नहीं। जीतने के मतलब चकमो शिंग नुन ही है, चकले चकलाओ इनकार निलो नीचो, जीने की चीज़ है। ठीक है, इसलिए हर वक्त खुद को साबित करने की दौड़ में मत भागो, थोड़ा रुक कर जिंदगी को महसूस भी करो, क्योंकि आखिर में जीती हुई बाजियां नहीं, जिए हुए पल याद रहते हैं। ठीक है, जो पल, जो मोमेंट जो आप अपने चाहने वालों के साथ गुजारते हैं, अच्छे इंसान के साथ गुजारते हैं, अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ गुजारते हैं, वो पल आपको हमेशा यादगार बनाए रखेंगे। तो इसलिए जिंदगी को बस जीते रहिए, जीतने और हारने में आप कोशिश मत कीजिए। ठीक है,
तो चलिए इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेना चाहूंगी हमारी अधूरी कहानी अरिजीत सिंह की आवाज में गाया गीत आप सभी के लिए मैं पेश करना चाहूंगी और दिल से मैं आप सभी को फिर एक बार शुक्रिया अदा करना चाहूंगी आप सभी के प्यार और संदेश के लिए. इस तरह हमेशा हमारा साथ देते रहिएगा, हमें सुनते रहिएगा और आप हमें संदेश भेजते रहना, क्योंकि आपके बिना हम बहुत अधूरे हैं. ठीक है, हम बहुत ही अधूरे हैं. इसलिए हमारी और आपकी कहानी तो अधूरी नहीं होगी. लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगी कि वो इंसान बहुत ही खुश नसीब होते हैं जिनकी कहानी अधूरी नहीं होती है. लेकिन ज़िंदगी में अगर हमारी कहानी किसी के साथ भी अधूरी हो, इसका मतलब ये नहीं है कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई है. तो चलिए उस अधूरे कहानी को पूरा करने के लिए आइए हम सभी एक साथ फिर से उसी उम्मीद के साथ जीते हैं, अपना समय बिताते हैं. तो चलिए ये आखिरी गीत मेरी तरफ से आप सभी के लिए और अजय विली की तरफ से. बाय बाय, टेक केयर, बाय गुड. ओ लोहिम एन कोल चाउला लोहिम एम एम रो ओ.

0: Hei hi Akashvani Aizol FM zo oiza point pasari chinga pon swa ani vo in July ni san hi som ni paru ni line tho chna ta na kan hun voi khatna kan zo tereng mai mit ngai thatu te zong zong chunga lom thu kan suya kan hun voi ni nei tai dali le chan via kan chan le do na min lo ngai thale chep turin kan so ma chu hun man pui tu chau hi lawat fili rg of fili kan ni a control room engineer duty hi lerin tiki ani In Zavain ni manuam vek ule.
1: के साथ वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की वार्ता की सम्मेलन में दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज के समय में सामूहिक विश्वास सबसे बड़ी संपत्ति है और भारत जापान की द्विपक्षीय साझेदारी समय की कसौटी पर खरी उतरी है श्री मोदी ने कहा कि इस परिकल्पना को साकार करने के लिए भारत और जापान ने एआई के क्षेत्र में एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया है प्रधानमंत्री ने कहा कि जापान की सटीक प्रौद्योगिकी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमताओं का संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति प्रदान करेगा
2: प्रधानमंत्री ताकाइची और मेरा विश्वास है कि टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानीज पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं
1: अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन के लिए भारत के लंबे समय से चले आ रहे प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिर से समर्थन मिला है 140 सदस्यों द्वारा अपनाई गई संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आतंकरोधी रणनीति की नौवीं समीक्षा में सदस्य देशों से आग्रह किया गया है कि वे भारत द्वारा तीन दशक पहले प्रस्तावित सम्मेलन को अंतिम रूप देने के लिए हर संभव प्रयास करें संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि सर्वमान्य कानूनी ढांचे का अभाव वैश्विक आतंकरोधी प्रयासों को कमजोर करता है उन्होंने आतंकवाद से निपटने में दोहरे मापदंड न अपनाने पर बल देते हुए अपराधियों वित्त पोषकों और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराने का आह्वान किया
3: इंडिया हैज बीन अ विक्टिम ऑफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म फॉर डिकेड्स
4: भारत

0: दशकों से सीमा पार आतंकवाद को झेल रहा है। हमने इसकी भारी कीमत चुकाई है। इसी अनुभव के चलते भारत ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। आतंकवाद के सभी रूपों और तरीकों की निंदा की जानी चाहिए। भारत ने आतंकवाद के लिए फंडिंग को रोकने पर वैश्विक ध्यान केंद्रित करने की दिशा में काम किया है। भारत का मानना है कि आतंकवाद विरोधी प्रयासों को राजनीति से प्रेरित बयानों से कमजोर नहीं किया जाना चाहिए।
1: अमेरिका, इसराइल और अर्जेंटीना ने प्रस्ताव के विरुद्ध मतदान किया। आज जम्मू में भगवती नगर आधार शिविर से कड़ी सुरक्षा के बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए 4,822 तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। इस पवित्र यात्रा में शामिल होने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से तीर्थयात्री जम्मू पहुंच रहे हैं। 4,822 श्रद्धालुओं का पहला जत्था 147 गाड़ियों के काफिले में रवाना हुआ। ग्रामीण विकास, कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 देश में रोजगार सुनिश्चित करने, ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने तथा गांवों के विकास में तेजी लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री चौहान ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ आज तिरुपति जिले के मुक्कावरीपिल्ले गांव में विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 का शुभारंभ किया। बंगलुरु दक्षिण तालुक में एक चट्टान के गिरने से 7 प्रवासी श्रमिकों की मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और खदान के मालिकों की तलाश जारी है। मृतकों में बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तरी कर्नाटक के निवासी थे। कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डॉ जी परमेश्वर ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए खदान मालिकों के खिलाफ उचित कार्रवाई का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। राउंड ऑफ 32 के मैच में सह मेजबान अमरीका ने आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर 2002 के बाद अपनी पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. India and Japan today exchanged several agreements in different fields, including economic and energy security, pharmaceuticals, defense, and AI. Prime Minister Narendra Modi held annual summit-level talks with his Japanese counterpart Sanae Takaichi in New Delhi this afternoon. Addressing the joint press meet following the talks, Prime Minister Modi said mutual trust is the biggest asset in today's time and the India and Japan bilateral partnership has stood the test of time. He highlighted that India and Japan are among the world's biggest economies today and a free and open Indo-Pacific is a shared priority for both countries. Mr. Modi said India and Japan have issued a joint statement in the field of AI. He added that technology partnership will be the most important pillar of India-Japan cooperation.
3: टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने जॉइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानीज पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं। जापान की प्रिसीजन टेक्नोलॉजी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमता, इसका संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति देगा।
2: The Prime Minister also informed that in the field of defense, today both nations have signed an agreement on the first co-development project between India and Japan. The Japanese Prime Minister arrived in New Delhi last evening on a 3-day visit to India. This is the first official visit of Prime Minister Takaichi to India. Union Minister Shivraj Singh Chauhan, along with Andhra Pradesh Chief Minister N. Chandrababu Naidu, today launched the Vikasit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Grameen, VBG Ramji Act, at Mukkavarayipalle. village in Tirupati, district of Andhra Pradesh. Addressing the gathering, Mr. Chauhan said VBG Ramji Act marks a major step towards ensuring employment, strengthening rural livelihoods and accelerating the development of villages across the country.

आपकी आरजी 100.7 एफएम जोई में आप सबके साथ एक बार फिर दोस्तों आया समय हिंदी गीतों का आनंद लेने का। जिंदगी एक आईना है, जितना मुस्कुराओगे उतना ही खूबसूरत दिखेगा, ठीक है ना दोस्तों? इसीलिए चलिए मुस्कुराते हुए गीतों का आनंद लेते हैं। ये रहा गीत आप सबके लिए, सबसे पहले सनम द्वारा, सनम की आवाज में हम सुनेंगे गुलाबी आंखें, आप सबके लिए मेरी ओर से।

दोस्तों, मैं कहना चाहूंगी खुश रहने का मतलब ये नहीं कि सब कुछ ठीक है। इसका मतलब ये है कि अपने आप को दुखों से ऊपर उठकर क्या है जीना सीख लिया है, ठीक है ना। आपने आपके दुखों से ऊपर उठकर जीना सीख लिया है, बहुत अच्छा है ना दोस्तों। यानी कि दुख जो है जीवन में आते रहेंगे, लेकिन दुख के बीच में भी जब दुखों से ऊपर उठ करके हम जीना सीख लेते हैं, तब हम खुश रहते हैं। सो दोस्तों, हमेशा आइए स्ट्रांग बन के जीते हैं, ठीक है ना। यहाँ SMS आया है दूंगा साइक्लो की ओर से। इन्होंने कहा है कल लोंगा इथ लवे रेंग अन्या ड्यूटी नुआम ले रंतिया दोंगा कनवन लो मे मो तुई तक गई थक तान कन गई थक ले तुर जोंग सोंग ही तान करंती है ओ चुआन दुआ ती हियान इन ओय अनुआम ए हेंग हे वांग हियान लोम आरजे मुआन पुई कति ठिन छन चु कलो मे रंती नि आ दुआ ती वान ती लोम ओम ते लुल लेम चुआन कुंग ते खुंगे केवा लचु हनको छक ला तरो तुई तके गई था कतान। अगला गीत हमारा रहेगा तेरा घाटा गीत, ठीक है ना। यहाँ पे एक हाँ SMS यहाँ पे आया है कोरोल रोल रोनलू थी केवा ला फर्नु मन पुए कमल लाइन कलोलू

te lut ve e ron ti ni ole ole man lai lu kha poi mo chuan kan ngai thak tur te tan o oh, hei kung tian thil alo soya chuan ve in ni lama te in lo in kom hle ni oma chuan enge internet in ang ta min vin kom ngei ve kan ron ti deu bok ani o tu ta kan ngai thak tan kan ngai thak le turi tan ya ha gla sms jo he me dekhna chahungi kon he मदन गौरा, आपका ये नाम है ना, आपका नंबर हमने सेव नहीं किया है, लेकिन मैं जान सकती हूँ कि यहाँ पे आपका नाम इस तरह से दिख रहा है। गुड इवनिंग टी टाइम कह करके हैप्पी टी टाइम आपको, और खुशी खुशी गीतों का आनंद लेकर आप अपना चाय जो है एंजॉय कीजिएगा। चलना चाहूंगी अगले गीत की ओर, तेरा घाटा। ये रहा आप सबके लिए गजेंद्र वर्मा की आवाज में, आइए सुनते हैं।

दोस्तों, मैं तुरंत ही आपके एसएमएस की ओर जाऊंगी। यहाँ मजेदार एसएमएस जो है श्रोताओं की ओर से, दोस्तों की ओर से आए हुए हैं। आके वाला लिखता है, हुन मसलमा मिस्टर ब्लाइन पचवाओ ngai zong tu nga thin zia kha min ti ngai rj mi khie nen in lo duty dun hia aji aji mi khie phun run thumbs up nyao kan nui dun vur vur me ke wala oi khang lai khani mr blind paswao khani e tro lak the tap chumi ma po chuan in the lak tho kha doctor zo o yan di lai zong zong te kha mo athen in doctor tak tak motia an lo phone na an lo ron vel teng te kha mo min te se chuak thut ta ni chu ha yahan pe agla sms ki kiska hai dekhna chahungi he he bi tin ye nor all of oi ming he bi chung thu mi a bi chung thu bl chung thu आरजे मैं आखिर तक तुम्हारी बात सुनूंगी और तुम्हारे साथ रहूंगी। वाह, सो मैं क्या बोलूं, मैं तो बहुत खुश होंगे। आपने खुश कर दिया मुझे। बी एल चोंग थू, साथ देते रहिएगा और इसी तरह से क्या है, मैं भी खुश रहूंगी, ठीक है ना। आपने हमें यहाँ पे एसएमएस दिया है वो भी हिंदी में, और भी कितना अच्छा लग रहा है। और जो गीत हम सुनने जा रहे हैं आपके लिए खास खास तौर से, मैं यहां से डेडिकेट कर रही हूँ तहे दिल से, ठीक है ना, कबूल कीजिएगा। बीएल सोंगथू, थैंक यू सो मच। और यहाँ पे भी कुंगतिया की ओर से कपुके वालचू अमुजून रंगे मुनिले हेलो लंग तो ए नीलवुई जो लो ती तका अलो मु हिले थे नि अंग रोंती अमो इंपो नि से हे लो लंग मनता ए यहां पे जेल इल्जाम की ओर से आज मा मोन पुई वोइन छुना वी कुंग तेले के वालते चु वोइन छुना tlong loyan tla a an mani kan zon na lama kan ha shipalom pc mazara meng moi te a tui thia mazara an nun nan chan him thai sha malom har hlom lut tuk mai no pang chia ang mai in haron ti ni o le chu ti khop chan zon an long ai ni mo eng po ni se nin zong hu to atro he zani na kanom le thap ta e fm zo oiza point pasari a दोस्तों अगले गीत की ओर चलते हैं। अगला गीत जो है केके की आवाज में हम सुनेंगे यारो गीत। आप सबके लिए ये रहा।

जी हाँ दोस्तों, चलता रहेगा ये जिंदगी का कारवां तो, है ना। यूं ही साल भी गुजरते जाएंगे, मगर वो लम्हे जो संग दोस्तों के साथ बिताए हैं, हम चाह कर भी नहीं भूल पाएंगे। दोस्ती बहुत अनमोल है। दोस्तों, अंतिम गीत के तौर पे मैं आप सबके लिए छोड़ जाऊंगी प्यार के पल, ये भी केके की आवाज में ही हम सुनेंगे। और इस गीत को मैं आप सबको डेडिकेट करती हूँ। मैं जाना चाहूंगी SMS की ओर। यहाँ SMS मामून रमलोत की ओर से आया है। इन्होंने कहा है, उमान पु यारो खा कंजवा तान थ्यान अंत्या तेरे मई ठियान ला ठियान एम एम ला मोई तुपने यारो ही तुमो ठियान ला अन्या चौन इन फ्रेंडशिप मो ला चौन मा हुनी रम लोट मिलो गाई थचर चर ओ हे कन गई था ले तुर पोही इतान ल्याओ ल्याओ करंती है। चौन यहाँ पे के वाला लिखता है, फर नो मान पुए वी कुंग ते जो कने खा नी लवुई जो लो चू नोय थिल ज्या ही आवांगे दोन ले पेक मंगे निन हाउ लेंग तीजो कवन लाउ तक विन ने निन कोमा तुई तकिन मो मासे जन ल माहे निन हाउ मंग ती कवन लाउ आला लेर फ्यान ले हा लन रोन तन रोन नुइन से एम एम मे बॉक्सिया ले रा या निन निन पु क्वाल तन वेक बॉक्सिया अतो बेर बेरंगे लेर चो वा तो बेरंगे लक चो वा तो बेरंगे लक लो चो पोखशिया तो बॉक्सी लो जरो एंग पोनी सेन जवा इन इन लक इन मेलटा ती ज्या के जोन कशिया ओ। हाँ दोस्तों, आपके अर्जुमान पुरी 100.7 FM जमोई में आप सबके साथ। दोस्तों, अंतिम गीत के तौर पे इस सेगमेंट में मैं आप सबके लिए लौट आऊंगी 8:02 में। दार या टेमिन इतने अगला लेट लेंगा आरजे में खीते चौनिन आरजे सांगते या इंती मेंगते ने हरों इंती ओ आरजे सांग सांगी ते हन रन लूट ले मल मल दोना और इन लोग आई चांग दोने आ। हाँ दोस्तों, चलना चाहूंगी अंतिम गीत की ओर। ये रहा प्यार के पल, ये जो है केके की आवाज में है आप सबके लिए मेरी ओर से।

आपके आरजू मान पर 100.7 एफएम जोवोई में आप सबके साथ एक बार फिर आया समय फिर से हिंदी गीतों का आनंद लेने का। दोस्तों चलिए चलते हैं गीत की ओर तुरंत ही, टाइम वैसे बर्बाद नहीं करना है आप सबके लिए। ये रहा सबसे पहले गीत के तौर पे तुम मिले, ये आप सबके लिए तहे दिल से मेरी तरफ से जाता है।

दोस्तों, मैं जाना चाहूंगी आपके SMS की और यहाँ SMS आया है मेरे लिए लदिनपुई अफल कोनवेंग लाई की ओर से। इन्होंने कहा है और जो मोनपी प्ले ले तुरखा नंगमा तान ले लंगाई थवे जोंग जोंग तान ले आर जे जोंग जोंग तान ले पार पारी पु तान कुंग ते तान मेंग मोई ते तान के वाला तान रंते ने ललिन पुया हियान लंगाई थवे तुरा ngai yang oi ron khan sakte hian in hebing boi te te kung te te ke wala te chon om nge ya par pari pu he longai thla longai thame ke mo ga sha cha lawa impon ni se kung te te par pari pu te meng moi te te du sak takin he engen ni athyan te zong zong tan le a je zong zong tan ti in laldin pu fal kon hian min ron thlan sak ani laldin pu kan lo me me mai tan karon ti let ve atui takin lawa sa don ne a meng moi te ki or sin hone kaha he ma mon pu moi nga le haron ti ne nuam chi ne chuanin moi deuh deuh kan ron ti kan tum ze lang meng moi te a e tui takai ngai thak tan kan ngai thak le tur te tan ni se और यहाँ पे वी कुंती की ओर से इन्होंने कहा जो मन पे मुतवन छुआक वे मुहिल मई दोनों रनते आ निची ना खानिन के वाला का नोपंग खा इन थियात्रो चुआन इन तू ना हैं तीन गे रनते हैं चले ये समय से अलग आई लवे ओम सिया इंपोनी से वी कुंती का शत्याम लो तुक्तिया चौहिन वे थे लम्त

मैं जाना चाहूंगी आपके SMS की ओर। यहाँ SMS आया है ललदिनपुए की ओर से। इन्होंने कहा जे प्ले ले तुर खा नंगमा तान ल्याओ ल्याओ थी इन ललदिनपुए ह्यान मिनरन दे के चने। थैंक यू ललदिनपुए चुआन लपक अच्छा कन गाय थे तो ना तुन सेगमेंट चाहे चुआन और मे बी लपक हत लेतले मा मुनिरम लोथे नु मान पे कला दोलो तो किलो प्ले आ नो में जीना जीना पोखा कला दोलो तो खलथन पो अंगाई लो रंदे ने वन लोमम तेलु लेम तुई तकाई लोंगाई थाक से लफांगिन दंग पो इतान ल्याव ल्याव ओ मा मुने। हितेंद्र दास यहां पे लिखता है गुड इवनिंग आरजी जी। हितेंद्र दास फ्रॉम असम। ओके हितेंद्र दास आपने साथ दिया है आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी तरह से जो गीत हम प्ले करने जा रहे हैं आपके लिए खास खास तौर से मैं डेडिकेट कर रही हूँ। चलो चाहूंगी अगले गीत की और अगला गीत ये जा रहा चांद चांद छुपा बादल में। ये गीत जो है आप सबके लिए मैं डेडिकेट कर रही हूँ। और इस गीत के साथ साथ मैं यहाँ से चली तो जाऊंगी फिलहाल के लिए, लेकिन मैं लौट आऊंगी आप सबके लिए 10 बजे। तब तक के लिए मेरा फिर से इंतजार कीजिएगा। आपके आरजे मोहनपुरी 100.7 FM जोन में आप सबके साथ आएंगे आपके आरजे मिखी, उनका भी साथ दीजिएगा। ये रहा गीत।

आपकी आरजे मोहनपुरी 100.7 एफएम जोई में आप सबके साथ दोस्तों आया समय हिंदी गीतों का आनंद लेने का। और आप सब अभी तक मेरा साथ दे रहे होंगे, मुझे ऐसा विश्वास है। दोस्तों सबसे पहले गीत के तौर पे मैं प्ले करना चाहूंगी, दीवाना है ये मन या दिल का रिश्ता, ये सोच के मैं आई हूँ। हाँ चलो चलते हैं दिल का रिश्ता गीत की ओर। ये गीत जो है खास खास तौर से चुंगी चांद मारी और उनकी बेटी के लिए जाता है। ये रहा आप सबके लिए।

दोस्तों, मैं जाना चाहूंगी आपके SMS की ओर। यहाँ SMS आए हैं बी एल सुंगथू की ओर से। इन्होंने कहा है, अजी मोई देव देव खा लो प्लेजे रो अतो खेंग कलो ओम पुयंग से कति खा अरंती आ चुआन हे मिन लो ओम पुइंगे बुको बी एल सुंगथू हियानिंग कलोम ले ने। बी एल सुंगथू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरा ये मेरे अंतिम सेगमेंट तक शो तक आपने मेरा साथ दिया, इसलिए आपको मैं धन्यवाद कहती हूँ। और इसी तरह से आप जुड़े रहिएगा हमेशा हमेशा के लिए, ठीक है ना। हाँ, चलना चाहूँगी यहाँ पे अगले SMS की ओर। यहाँ पे जिलजामा लिखता है, माम आरजे माम मोन पे नमस्ते, कहा है आपको भी नमस्ते। जान इन तान इस सेगमेंट तो खारपुई तोरिन कछिंग मित कोबजा रूल व्यू ना इन कलम इन पुई टोक टोक रिंग से ओ इस आइटम लेटर जोंग जोंग खा इ प्लेलिस्ट लोंगाई थलतु ते तान ले इतान ओर अंति आ त्वांग ते तकिन नि हो दोन न्या कनिन मो कनिन तो ले मा लो जोंग खवा नुन ओम पुई इन ह्वाल हिम चेसे हे रिमोय रुन एफ एम जो ओय आ खवा नो मल सोम ना तम तक दोंगिन सेल ना था नेन हिमदम तकिन कन इन छोन ले दयाल दयाल थे कबे से अरन देने जेलल जा मकलोम ले मे मुछक तो व्या विन हा तो व्या वांग ति पोकरिंगा मासे चुति चुंग चुंग चुआन इन हे एंगेने का का सेगमेंट तो पर थिंग मिलो मेन पुया कलोम तक सेट जेतनी इचुंगा चुआन बीएल चोंग थोले जेलल जा मा इन पने तान ले चोंगी चोंग थोमो इन तान कनगे थाक ले तोर हे इन तान ल्याव ल्याव करंती ने। जाना चाहूंगी अगले गीत की ओर। अगला गीत आप सबके लिए ये रहा दोस्तों, दीवाना है ये मन। ये गीत आप सबके लिए जाता है, खास तौर से इन तीनों के लिए जो बहुत ही जल्द से यहाँ पे SMS बरसाया, बी एल चुंग थू जिल जामा एंड चुंगी। ओके, इन्होंने दिल का रिश्ता कहा था, फर्स्ट सॉन्ग के रूप में मैंने प्ले कर दिया था। अब जाना चाहूंगी अगले गीत की ओर, दीवाना है ये मन, चोरी चोरी चुपके चुपके फिल्म का बहुत ही लोकप्रिय गीत आप सबके लिए।

दोस्तों, मैं कहना चाहूँगी कि ये गीत जो है बहुत बहुत लोकप्रिय है, बहुत बहुत सुंदर है। यहाँ पे आपके SMS भी आए हुए हैं। SMS की ओर जाना चाहूँगी। फिलहाल मिंगमोइते लिखता है, मा मोनपुई इतान लेंगा छतु तान मिंगमोइते पो मिनलोला मेनपुए कवान लोम तेलुल एम मिंगमोइते अकन गे थाग ले तुर जोंग जोंग इतान करोंती नि से चुआन दुर्गेश नगनपुर हियान। गुड इवनिंग आरजे नमस्ते, कहा है दुर्गेश नगनपुर। अरे दुर्गेश, आपने अभी तक हमें सुना है, हमारा शो का साथ दिया है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और जितने भी गीत हम सुनने जा रहे हैं आपके लिए मैं डेडिकेट करती हूँ। और मैं एक बात गीत के और जाने से पहले कहना चाहूंगी कि हर एक रिश्तों में खास है दोस्ती, एक खूबसूरत सा एहसास भी है दोस्ती, है ना दोस्तों? और वो इंसान बहुत ही खुश नसीब होगा इस दुनिया में, ठीक है, जिसके पास सच्ची दोस्ती हो, ठीक है ना दोस्तों? लेकिन हमें भी दूसरों के लिए सच्चे दोस्त बनना चाहिए, बहुत जरूरी है ये बात, ठीक है ना? दोस्त तो खूब मिल जाते हैं, लेकिन सच्ची दोस्ती निभाने वाले दोस्त अगर मिल जाए ना, तो हम खुश नसीब कहलाए जाएंगे, राइट दोस्तों? हाँ, अब मैं जाना चाहूंगी देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत गीत की ओर। तेरी मिट्टी, ये जो है आप सबके लिए।

दोस्तों वाकई में बहुत ही मार्मिक, बहुत ही मन को छू लेने वाला गीत था वो फौज, ठीक है ना, हंस के मर गए अपने देश की शान के लिए। अफसोस हम आज भी लड़ रहे हैं रोटी कपड़े मकान के लिए, है ना दोस्तों। और मैं कहना चाहूंगी पूरी रात हमारे फौजी गण जो है सहते हैं, अपनों से दूर रह करके देश की हिफाजत करते हैं। इसी तरह है इनकी जिंदगी, हम उनको सल्यूट करते हैं। और जाना चाहूंगी इसी तरह एक और देशभक्ति गीत की ओर। इसके बाद हम चलेंगे दुर्गेश द्वारा यहाँ पे फरमाइश गीत है इसकी ओर, ये वतन। ये गीत आप सबके लिए जाता है, स्पेशली इस वक्त हमें सुनने वाले सभी फौजी गण के लिए जाता है।

जो पूरी रात जागते हैं, जरूरी नहीं वो सिर्फ ही आशिक ही हो, वो देश पर मर मिटने वाला जवान भी हो सकता है। चलिए चलते हैं यहाँ गीत की ओर। ये गीत जो है दुर्गेश द्वारा फरमाइश गीत तुमसे मिलना, ये तेरे नाम फिल्म का बहुत ही लोकप्रिय गीत है। खास तौर से फरमाइश करने वाले दुर्गेश के लिए जाता है और आप सबके लिए भी। ये रहा गीत।

दोस्तों, अंतिम गीत की ओर जाने का समय अब आ गया है। मैं यहाँ एक SMS की ओर जाना चाहूंगी। इन्होंने कहा है, जेल जामा और जे मा मोन पुई तिखान सोन मोंग तकिन कमु हिल थे दोन ता अतोप नान त्वांग तकिन ओर ते देव ना पा कवन लोम ते लुल लेम जेल जामा तुई तकिन इमुदोन ने ओ चुआन हा लो हा दम सोंग सोंग लनक तोक जिंगा दम तकिन इथोले दोन ने। और बी एल चोंग थू यहाँ पे लिखती है, ये बहुत ही सुंदर है अखे। शुक्रिया आपका, हमें बहुत अच्छा लगा, आपने अंत तक हमारा साथ दिया। ठीक है, और हाँ, ये जो गीत था बहुत ही सुंदर था और आप सबसे मिलकर के हमें अच्छा लगा। दुर्गेश जी, आपने जो जिस गीत की के लिए फरमाइश यहाँ पे दिए है, वो भी बहुत सुंदर है ना। आप भी खुश, हम भी बहुत बहुत खुश। और इसी तरह से अंतिम गीत हमारा रहेगा, कुछ कुछ होता है गीत है ये। और दोस्तों, ये गीत जो है मेरी तरफ से आप सबके लिए जाता है। और मैं कहना चाहूंगी, आप सब हमेशा स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। और इसी तरह से FM 100.7 में हम मिलते रहेंगे। और ईश्वर आप सबको आशीष दे, गॉड ब्लेस यू ऑल। और मैं आप सबसे न चाहते हुए भी विदा मुझे लेना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ घड़ी जो है ना टिक टिक करके मुझे इशारा दे रही है कि मेरा यहाँ साइन ऑफ करने का समय आ गया है। सो आप सबको बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर और शुभ शुभ शुभ रात्रि। अंतिम गीत के तौर पे आइए चलते हैं गीत, जैसे यहाँ पे ऑलरेडी मैं लगा रही हूँ, कुछ कुछ होता है टाइटल सॉन्ग।